0: This is Radio Dhorbarahi 103.8 MHz.
1: ए गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस वनमा।

0: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर शुक्ला गण्डकी साथ सेरा प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा मोबाइल 9850202779।
1: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन के आवाज।

0: Sele
1: Nyangi Goyla Yeno
0: Kanung Rose Mamhagin
2: मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिने मामु
1: यंगी रिमथिम दिंगी जो थन लबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयास की
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
1: रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
0: नाको रसेमु नजाटनी पट्ट लाफा को के रसे के होसनी है।